0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

में भी आता है, लेकिन जब इसके साथ सिला अला आता है तो इसका माना होता है ऊपर से नीचे लटकाना, इरखा। यानी यहां पर खाली युदनीना नहीं है बल्कि युदनीना अलई हिन्ना है। अला ऊपर को भी कहते हैं, लपेट लें अपने ऊपर से, और ऊपर कहां से शुरू होता है? कंधों से, सर से शुरू होता है। यानी सर से, सिर्फ सर तक न करें, उसको भी लटकाएं। क्या चीज? मिन जलाबी बिहन्ना, अपने जिलबाबों में से। ये जिलबाब क्या चीज है? जिलबाब की तशरीह अहले लुगत ने यूं की है, हुवर रिदाउ फौकल खिमार, हुवा अर रिदा फौकल खिमार, वो चादर है दुपट्टे के ऊपर की या दुपट्टे से ऊपर की। खिमार क्या होता है? दुपट्टा या स्काफ। खमर से है ना ये लफ्ज, और याद होगा आपको जब खमर के बारे में हमने पढ़ा था कि खमर की डेफिनेशन क्या है, अल खमर मा खामर अल अक्ल, कि खमर वो है जो अकल को ढांप ले। यानी शराब की डेफिनेशन क्या है? जिससे अकल जाती रहे। तो ये असल में खमर का लफ्ज भी खिमार से निकला, और खिमार कहते हैं औरत के सर के कपड़े को जिससे सर लपेटा जाए। सूरत नूर में हमने पढ़ा क्या हुक्म दिया गया था कि अपना खिमार जो है, दुपट्टा जो है, उसको अपने सीने पर भी डालें। और यहां क्या कहा जा रहा है कि जिलबाब को ऊपर से लटकाएं, यानी सिर्फ खिमार काफी नहीं, सिर्फ दुपट्टा काफी नहीं, बल्कि दुपट्टे के ऊपर चादर डालें, और सिर्फ डाले ही नहीं बल्कि उसको लटकाएं भी। युदनीना अलैहिन्ना, यानी सिर्फ लपेटना नहीं बल्कि लटकाना मकसूद है। और ये भी याद रखिए कि युदनीना अलैहिन्ना नहीं है, तरफ अपने, क्या कहा? अलैहिन्ना। इला और अला में फर्क होता है। तो जिलबाब क्या चीज है? बड़ी चादर, जो खिमार यानी अंदर के ड्रेस के ऊपर ली जाती है। एक लफ्ज हमने पढ़ा था लिबास, जो सूरत अल आराफ में आया था। फिर उसके बाद हमने खिमार पढ़ा, दुपट्टे की बात पढ़ी। लिबास कहते हैं ड्रेस जो इंसान जिस्म को छुपाने के लिए पहनता है, जिसको जीनत भी कहा गया। हुजू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, अपनी जीनत पकड़ो हर मस्जिद के करीब। यानी लिबास वो चीज है जिसके बगैर नमाज नहीं होती, जो इंसान के सतर को ढांपता है, जो खूबसूरत होता है। जैसे शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। और इस कमीज शलवार को अमूमन लिबास जैसे कहा जाता है, तो इसके साथ औरत के लिए खिमार भी होता है जो उसके सर को ढांपता है। तो क्या हुक्म है? कि वो खिमार छोटा ना हो कि जिससे सीना नजर आए, बल्कि वो खिमार लंबा हो जिससे सीना ढक जाए। और यहां पर क्या हुक्म है? कि खिमार और लिबास के ऊपर क्या पहना जाए? जिलबाब पहना जाए। और जिलबाब की जरूरत घर में नहीं होती, जिलबाब घर से बाहर का लिबास है। घर के अंदर लिबास ही काफी है। शुआराए जाहिलियत के कलाम में ये बात पता चलती है कि शुरफाए अरब में जिलबाब का रवाज था। लौंडियां नहीं पहनती थी, लेकिन जो शुरफा आजाद लोग थे उनकी खवातीन जिलबाब पहनती थी। इसमें बहुत से अरब शायरों के शेर आते हैं जिसमें इस लफ्ज का इस्तेमाल मौजूद है। मसलन कबीले हुजैल की एक शायरा ने एक शेर कहा है, वो अपने किसी मकतूल के मरसिये में कहती है, तमशि सिन्नूर इलैही वही अलाहियतुन मश्यल अजारा अलैहिन्नल जलाबीबु।
اس کا معنی مشی الازارا، مشی کہتے ہیں چال، ازارا کماری لڑکیوں کی، کسی کی چال کے اوپر بات کرتی کہ اس کی چال ایسے تھی کہ جیسے کماری لڑکیاں علیہن جلابیبو، اپنے اوپر جلباب پہنے بڑی چادریں اوڑ کر جا رہی ہوں، یعنی ایک جیسے جھنڈ جا رہا ہوتا ہے. یہ شعر کو ایک کوٹ کیا گیا صرف لفظ کو واضح کرنے کے لیے، اس سے کوئی اسلام کے حکم کی بات نہیں ہو رہی. تو اس سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عورت کو گھر سے نکلتے وقت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کی بیوٹی اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے.

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा

0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।